0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: प्रियंका चोपड़ा

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती, किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं, कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: तू लव करती है ना मेरे से?
4: बस लव है तो सब है।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटती। सिर्फ मेरा हक है इस पे, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: 2 splendid years of Insurance Market Metro Station. From Sheikh Zayed Road to your screen, I am always nearby. InsurancemarketAE.
2: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 7:07।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 92.2. The beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जाद, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
3: वाओ, योर हेयर कलर लुक्स स्टनिंग।
4: थैंक्स, आई डिड इट मायसेल्फ दिस मॉर्निंग इन 5 मिनट्स।
3: या राइट, नो इट्स हिना स्पीडी इजी हेयर कलर दैट्स मेड इन इटली। इट्स अमोनिया फ्री एंड enriched with henna extract and argan oil.
4: Really?
3: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
4: I'm buying it right now.
3: Get maximum gray coverage, vibrant color, and a natural looking finish with henna speedy easy hair color. Made in Italy.
5: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1, and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, 4 exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: The Big Breakfast, brought to you by Papa John's New Pan Pizza. Enjoy 360 degrees cheese, loaded toppings, and a crispy Parmesan crust. Order now.

0: गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम, शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड, द बिग ब्रेकफास्ट ब्रॉट टू यू बाय जेटोर यूएई, ड्राइव योर फ्यूचर, पार्ट ऑफ एलीट ग्रुप होल्डिंग।
2: अपने बिजनेस ड्रीम को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन के साथ। अब सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस, 48 आवर्स में एक वीजा पाइए, पैकेजेस सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू। 100% डिजिटल प्रोसेस, मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं। एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज, साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान। आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae।
3: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetor T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, 4 exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: The Big Mix, weekdays 1 to 5 p.m. only on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
4: Get ready to laugh till your stomach hurts. The best comedy is hitting the stage, and these two old legends are about to drag each other down live. Purane Chawal, starring Kumud Mishra and Shubhrajyoti Bharat, directed by Sumit Vyas. Catch this seasoned comedy on 26th and 27th September at The Junction. D for Drama. Book your tickets on Platinum List. Event made large by Big 106.2.

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: मॉर्निंग 7:23 ऑन द क्लॉक। इट माइट सीम नाइस एंड सनी आउट देयर द स्टार्ट ऑफ दिस फ्राइडे मॉर्निंग। डोंट फॉरगेट टिल मंडे देयर इज अ फॉग एंड मिस्ट अलर्ट बाय द एनसीएम, येलो टू ऑरेंज। Drive safely, never know when visibility might get affected. 31 degrees Celsius right now, humidity really high, 74% ki chip chip factor hai, winds blowing at 13 kilometers per hour, highs of 36, lows of 31 degrees Celsius.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है Sid on the Big Breakfast only on Big 106.2 The Beat of Bollywood।

0: Now lease a brand new SUV from Jetworth and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2.
2: It is 7:35 on the clock. This is The Big Breakfast.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: यार आजकल क्या है ना, एआई के चलते यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. यू सी समथिंग एंड यू आर लाइक वाओ मैन दिस इज लुकिंग रियली ऑसम, एंड देन यू रियलाइज कि नहीं, दिस इज नॉट द रियल थिंग एट ऑल. ये तो किसी ने एआई स्लॉप बनाकर हमें चिपका दिया, एंड देन यू एक्चुअली वेस्ट सो मच ऑफ योर टाइम इन जस्ट काइंड ऑफ ईदर लाइकिंग समथिंग और हेटिंग समथिंग, बिकॉज दोनों में टाइम तो लगता ही है. व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? कल मैंने देखा मॉन्स्टर का एक पोस्टर आ गया, सलमान खान यू सिटिंग इन अ लाइक ऑलमोस्ट अ विंटेज क्यूबा में होती है ना कन्वर्टेबल कार्स. Yeah, with no roof, and he's got like blood on his left arm, probably shot on his bazu. Yeah, you guessed it right. Matlab, it's actually Ranbir Kapoor ka the first look from Love and War. Ye SLB ki wo film that everybody is talking about, waiting for so long. So uska first look is out. In that first look, Ranbir Kapoor is sitting inside a blue Cuban convertible car. I don't know if he's in Cuba or not, lekin he's looking very good, very intense. Somebody kind of just replace Ranbir and put Salman instead. Ki ye monster ka first look hai. I got monster disappointed. Yeah, but UAE schools AI padhana bhi chahti hain aur technology use bhi nahi karna chahti hain. Yeah, what is this confusing piece of news? Coming up in just a while. This is The Big Breakfast with me, Sid. Good morning.

0: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: Yes, अंगड़ाई लेना बनता है यार. फ्राइडे की सुबह थोड़ी धीरे धीरे होती है, but there's an opportunity for you. आप जानते हैं what's going on. It's just quite literally the most amazing contest that's going on in the radio in the UAE.
0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bowery and Kora. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: जर्मनी जाने का मौका, वो भी एब्सोल्युटली मुफ्त फॉर एन ऑल एक्सपेंसेस पे ट्रिप विद टीम बिग. उसके लिए करना क्या है आपको, सिर्फ एक व्हाट्सएप भेजना है. सीरियसली, आर यू सीरियस? हाँ, यही करना है आपको. बिग चेक इन स्पेस देकर अपना नाम, यू गॉट व्हाट्सएप इट टू 0543091062 पे व्हाट्सएप करो. बिग चेक इन स्पेस देकर अपना नाम एंड यू गॉट जस्ट अबाउट एन आर एंड अ हाफ टू गो. तकरीबन 9:15 बजे तक हम लोग खेलने वाले हैं अ कॉन्टेस्ट. अगर आपने बहुत ही आसान से सवाल का दिया जवाब, आपका नाम चला जाता है ड्रॉ के अंदर. यू वन स्टेप क्लोजर टू विनिंग दिस ट्रिप टू जर्मनी विद टीम बिग. सो गेट व्हाट्सएपिंग.
0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bowery and Kora. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: करके।
1: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
2: बिग टाइम चेक।
3: गुड मॉर्निंग, 8:07।
2: Bollywood.

0: going to. The beat of Bollywood.
1: Wow, your hair color looks stunning.
2: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
1: Yeah, right.
2: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
1: Really?
2: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
1: I'm buying it right now.
2: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
3: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, 4 exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
4: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
5: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
4: अलरास बोले तो
5: मिडल ईस्ट का नंबर 1 ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते है।
4: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर 1 ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
6: Remember the person you thought was a superhero as a kid? For Manoj, it was Pintu Bhaiya, the fearless local hero of early 2000s Patna. A story of childhood, friendship, love and home. Experience Patna ka superhero, starring Ghanshyam Lal Sa, 26th September at The Junction. D for drama. Book your tickets now on Platinum List. Event made large by Big 106.2.
0: Traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: Good morning, 8:45 on the clock on this Friday ki subah. There is traffic 311 par heading south going towards Nadir Shiba, and this is जैसे आप सिटी सेंटर मिर्जिफ क्रॉस करते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ 4-5 मिनट का कंजेशन 44 पर और अलखेल रोड इज अ 7 मिनट डिले एंड दिस इज ऑल द वे फ्रॉम रसल कोर्ट टिल बिजनेस वे एंड अ बिट फर्दर गोइंग टुवर्ड्स अलकूज फोर्थ इज वेल। ट्रेड सेंटर राउंड अबाउट का ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो चुका है E11 हेडिंग साउथ एंड टॉकिंग अबाउट शेख जायद रोड ऑफकोर्स देन देयर इज अ ट्रैफिक गोइंग टुवर्ड्स अरिगा देयर इज अ D80 का ये ट्रैफिक है होरालंस देरा जैसे ही आप निकलने वाले हैं देन देयर इज 311 E11 हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा both these highways you'll find around 6-8 minutes ka usual traffic. Beirut Street right outside Medina Mall is also getting a bit busy and there's a congestion around Motor City heading south as well on 311.
3: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: Big 106.2.

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: बिग 106.4

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 9:08।
1: Bollywood.

0: Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood. The Big Breakfast brought to you by Jetour UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding.
1: अपने बिजनेस ड्रीम को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन के साथ. अब सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस, 48 आवर्स में एक वीजा पाइए. पैकेजेस सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू. 100% डिजिटल प्रोसेस, मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं. एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज, साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान्स. आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae.
2: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetour T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, 4 exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. The Big Mix. Miss kiya gaya?
3: Tum kar hi nahi sakte. Chaho bhi to nahi kar sakte ho.
4: Hi, Shirish.
5: Hi. My vacation has been pending for a long time. Like, I've been working in this company. Like, no holiday for like about a year and a half.
4: Lekin agar aap chale jaate ho, मान लो आपका नाम एकदम ऐसे हो गया, लॉक हो गया, आप जा रहे हो बिग चेक इन टू जर्मनी, फिर आप छुट्टी कैसे लोगे?
5: It is a startup, तो मुझे छुट्टी दे देंगे, like I'm very close with the manager.
4: एक सवाल पूछूंगी मैं जीके का, इट्स नॉट द जनरल नॉलेज, इट्स द जर्मन नॉलेज. व्हिच एवरीडे प्रिंटिंग इन्वेंशन वॉज डेवलप्ड इन जर्मनी बाय गुटेनबर्ग अराउंड 1440s? योर ऑप्शन आर ए द मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस, ऑप्शन बी द बॉल पॉइंट पेन, और ऑप्शन सी द टाइपराइटर.
5: Oh, I think it's the movable type printing press.
4: Sure.
5: Yeah, because I think I remember ballpoint pen being like somewhere else. Like, I'm taking a chance between the other two options. I think it should be the movable press. It is a 50-50 for me.
4: But it is correct! थैंक यू सो मच रीश, आपका नाम जो है रजिस्टर हो चुका है. लेट्स सी आप ड्रॉ में जीतते हो या नहीं जीतते हो, बट यू आर वन स्टेप क्लोजर टू बिग चेक इन टू जर्मनी.
5: लेट्स गो. थैंक यू सो मच.
0: शेयर योर मिडडे मूड मंडे टू फ्राइडे 1 टू 5 पीएम. द बिग मिक्स विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2. द बीट ऑफ बॉलीवुड. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
6: It is 9:26 on the clock and let's take a look सबसे पहले at the capital Abu Dhabi. यहाँ पर कोई भी traffic नहीं है, हल्का बुल्का सा मिलेगा आपको at E11 going towards वही सेम बनियास की तरफ ज्यादा हुआ ट्रैफिक ऑन E11 एट मफराक इंडस्ट्रियल. एवरीथिंग एल्स इज स्मूथ फ्लोइंग. चलते हैं दुबई शारजा की ओर. यू विल फाइंड अ बिट ऑफ द यूजुअल 311 हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा. बोथ दीज आर्टरीज पे अराउंड 5 to 6 मिनट्स का ट्रैफिक. S112 इज गेटिंग अ बिट बिजी इंडस्ट्रियल एरिया 6 पे खास करके. देन मदीना मॉल के बाहर हेडिंग साउथ ऑन बेरूत स्ट्रीट ऑल्सो यूल फाइंड अ बिट ऑफ कंजेशन. थोड़ा बहुत स्लो मूविंग ट्रैफिक एट 44 एंड दिस इज रसल कोर गोइंग टुवर्ड्स D3.
2: Now lease a brand new SUV from Jetour and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: Big 106.2.

0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bowery and Kora. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: ठीक 9:30 ऑन दिस 25th ऑफ सितंबर एंड ये फ्राइडे याद रहेगा किसी ना किसी को बिकॉज देयर नेम गोज इनटू द ड्रॉ वन स्टेप क्लोजर. गॉट सौरभ विद मी ऑन द फोन लाइन. गुड मॉर्निंग
2: एचआर
1: सौरभ, क्या हालचाल है? आज कितने विकेट उड़ाओगे? हैं
2: आज नहीं मेरा

0: किसी को, बिकॉज देयर नेम गोज इनटू द ड्रॉ वन स्टेप क्लोजर. गॉट सौरभ विद मी ऑन द फोन लाइन. गुड मॉर्निंग एचआर वाले सौरभ, क्या हालचाल है? आज कितने विकेट उड़ाओगे हैं?
1: आज नहीं, मेरा हायरिंग का काम है, विकेट उड़ाने का नहीं.
0: ओह अच्छा, ऐसा भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या एचआर के अंदर?
1: यस, इट इज डिवाइडेड, हायरिंग समवन एल्स, फायरिंग समवन एल्स.
0: तो देयर इज एक्चुअली एन एचआर पर्सन हु इज गिवन द वेरी प्रेस्टीजियस प्रेस्टीजियस जॉब ऑफ फायरिंग पीपल.
1: यस.
0: My God, यार, is he the, obviously, कोई सवाल ही नहीं इस बात में कि must be the most hated person in the organization.
1: Sometimes.
0: वो क्या कोने में बैठ के खाना खाता है, उसके साथ बैठता नहीं है, कुछ वो जब पानी पीते हैं तो सब भाग जाते हैं.
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं
0: है. या कि उसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट होती है, what is the actual truth?
1: सब जानने की कोशिश करते, भाई मेरा नाम तो नेक्स्ट नहीं है.
0: लेकिन पता होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि यार ये बंदा है जो जो फायर करेगा लोगों को?
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं पता.
0: ऐसा नहीं. अच्छा, तो चार पांच
1: हो जाएगा उसके लिए.
0: हाँ, चार पांच एचआर लोग हैं, उसमें से एक है, लेकिन किसी को पता नहीं है. हाँ, कि ये बंदा, वाओ यार,
1: जो जाता है से उसको भी पता चलता है.
0: दिस इज मोर एक्साइटिंग देन द दिवाली की तंबोला दैट वी हैव इट. बट चलो यार, ये तो काम की बात तो होती रहेगी सौरभ, लेकिन हम लोग मुद्दे पे आ जाते हैं, ठीक है ना? मुद्दा ये है कि बिग चेक इन टू जर्मनी, ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप टू जर्मनी जीतने का मौका आपके पास. लेकिन उससे पहले आपको एक पड़ाव पर से गुजरना पड़ेगा. एक मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूँ, एंड अगर आपने इस सवाल का जवाब दे दिया सही सही तो आपका नाम ड्रॉ में चला जाएगा. बोलो, डन डील?
1: पूछ लेना भाई, अभी मैं बाहर हूँ, नेट भी नहीं चल रहा.
0: अब यार सवाल तो मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपकी थोड़ी सी मदद करूंगा, ठीक है?
1: ओके ओके, प्लीज.
0: नहीं, बाय द वे, आपने नेट के बारे में क्या कहा?
1: मतलब इंटरनेट नहीं चल रहा, मैं बाहर हूँ, तो सपोर्ट भी नहीं ले सकता.
0: तो किसकी गलती हुई है? एचआर की गलती?
1: मेरी मेरी मेरी मेरी. मुझे फायर मत करना.
0: आई मीन आई वुड लव टू फायर एनीवेज. ये हर किसी के मेरे ख्याल से बकेट लिस्ट में होता है.
1: आपके यहां भी है एचआर?
0: एचआर किसके यहां नहीं होता भाई, हैं? एचआर अब वो ह्यूमन रिसोर्स से कब हार्ट रेट पे आ जाता है ये पता नहीं चलता. बट चलो, इस मौके के आप ऋतिक रोशन हैं एचआर वाले, ठीक है? बिकॉज आई एम गोना आस्क यू अ क्वेश्चन एंड गिव यू 10 सेकंड्स टू आंसर दैट. इफ यू गिव मी द करेक्ट आंसर, योर नेम गोज इनटू द ड्रॉ. ऑलराइट,
1: ओके, डन.
0: द क्वेश्चन इज, व्हिच फेमस क्लासिकल म्यूजिक कंपोजर वॉज बॉर्न इन जर्मनी एंड रोट द वर्ल्ड रेनाउंड फिफ्थ सिम्फनी? ओके, आपका समय शुरू होता है अब. ऑप्शन ए इज इट बेथोवन, बी इज इट मोजार्ट, या सी इज इट शोपेन?
1: बी.
0: बी. दोबारा सोचो.
1: मोजार्ट.
0: दोबारा सोचो.
1: सी.
0: एक और बार सोचो.
1: ए.
0: अरे सही जवाब है यार, सही जवाब है. अगर आपकी कंपनी के एचआर वाले का नाम है सौरभ तो उसको कुछ भी नहीं लेकिन सौरभ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कांग्रेचुलेशंस, ऑल थैंक्स टू मी, आपका नाम चला गया ड्रॉ में एंड यू आर वन स्टेप क्लोजर टू विनिंग दिस ट्रिप ऑफ अ लाइफ टाइम. ये मेरी गारंटी है टू जर्मनी. सौरभ, कैसा फील कर रहे हो और कितने लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो आपको अमरीश पुरी समझते हैं, बताओ?
1: नहीं नहीं, मुझे ऐसा कोई नहीं समझता, लोग बहुत है.
0: हाँ.
1: पर आई एम द गुड एचआर, आई एम द पर्सन हु गिव्स द जॉब.
0: यू आर द गुड गाय. ऑलराइट, बट हाउ बैड डिड यू नीड दिस वेकेशन, टेल मी?
1: आई रियली नीड, अभी डेढ़ साल से कहीं नहीं गया.
0: हाँ.
1: ऊपर से सिचुएशंस यहां पे चेंज हो गए, सो दिस इज अ वेकेशन, थोड़ा पीस मिलेगा.
0: हाँ.
1: जाके
0: ही वांट्स टू लेट हिज हेयर डाउन, मुझे बता नहीं रहा है, लेकिन हाँ, एचआर वाले होते हैं विलन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ही वांट्स टू गेट अवे फ्रॉम इट, एंड व्हाट बेटर प्लेस देन जर्मनी टू गेट अवे? यार, दे हैव गॉट द ब्लैक फॉरेस्ट नाम का एक जंगल भी है, वहां पे जाकर एक्चुअल ब्लैक फॉरेस्ट खाओ. बताओ कि हमारी देसी ब्लैक फॉरेस्ट बेटर थी कि जर्मन वाली एक्चुअल ब्लैक फॉरेस्ट? देयर आर सो मेनी एक्सपीरियंसेस एंड द फ्रेंडशिप that you will make out there, the friends that you will make, that friendship will last you for a lifetime. ये हमारी guarantee है. So keep your fingers crossed कि जब draw हो तो आपका ही नाम उस draw में से निकले, ठीक है?
1: Yes, thank you brother, thank you.
0: Take care man, enjoy yourself. Thank you so much for taking part in our contest. Have a fabulous weekend also ahead. आप भी message करते रहो on our WhatsApp number 0543091062. You got to type out big check-in space देकर अपना नाम, big check-in space your name. Keep WhatsApping that to 0543091062. You could win a trip to Germany with Team Big.
2: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bowery and Kora. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. Big 106.2. Fast Track Song of the Hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: गाना अच्छा है और गाना ही अच्छा है, मैं बहुत कम फर्क होता है लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है. दिस इज फ्रॉम द फिल्म द वन दैट रिलीजेस टुडे, इट्स कॉल्ड समझोना.
1: Now lease a brand new SUV from Jetort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
2: Big 106.2. The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: I mean, I don't want to trash a movie even before I've ever seen it. लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन लोग इस फिल्म के बारे में क्या करें. First of all, here's what I think. Do not look at the title of this film for very long, क्योंकि आपकी स्पेलिंग को वो सीरियसली चैलेंज करेगा. एक तो द वन को इतनी, it's one thing to use numerology. It's fine if you believe in it, please use it. लेकिन don't confuse people so much. ना कि मतलब वन है उसमें आपने डबल ए लगा दी तो वन हो गया ना, लेकिन नहीं, इट इज वन ओनली. इट स्पेल्ड एज वी वी ए ए एन. आई अंडरस्टैंड अगर वी ए एन होता तो वैन हो जाता, तो आप एक डबल बी डाल दो, लेकिन डबल ए डाल दो. एनीवेज, देन इट गोज इवन फर्दर. उसका एक टैगलाइन भी है, द फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट, जिसमें फॉरेस्ट में एक एक्स्ट्रा आर लगा दिया. And then you wonder, yeah, forest की spelling गलत तो नहीं है, कि सही है कि गलत है. It's one of those confusing things. But इतनी numerology use करने के बावजूद क्या एकता कपूर की फिल्म अच्छी है? It all depends on the content. Content is king. And most of the reviews का सार summary यही है कि अच्छी शुरुआत होती है फिल्म की. It's a folklore tale, but it's undone by even uneven writing. और जो ending है ना वो कुछ ज़्यादा ही, it's like a muddled mess. That's what people are saying. We're talking about content, talking about shows and movies. Don't forget, it's a weekend. Weekend का मतलब the big binge मैं करता हूँ on a Saturday evening 7 to 9, and then Sunday from 10 a.m. to 12 p.m. And this time I'm going to talk about this show called Waiting Hai. Waiting Hai Amazon Prime का ये show है that kind of released about a week ago and I finally got watching it and kafi sare discussions ho rahe hain online, dekhe nahi dekhe, so good aspects bad aspects of this show starring Divyendu. And duniya bahut hi relatable hai na, hum mein se koi bhi nahi hai aisa desi banda jisne WL73 या 173 ke samne stare nahi kiya hai, page refresh nahi kiya hai. Hum jante hain वो दर्द जो होता है वेट लिस्ट पे होने में, व्हेन यू गेट अ वेट लिस्टेड टिकट इन द इंडियन रेलवे. सो इससे जुड़ा ये शो है. व्हाट आर द गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स ऑफ दैट शो? डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन टू द बिग बिंज विद मी सिड. एक बार फिर सैटरडे इवनिंग 7 to 9 एंड देन संडे 10 a.m. to 12 p.m. राइट हियर ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद्ध, सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू, डोंट टेल एनीवन।
3: व्हाई आर यू व्हिस्परिंग?
2: बिकॉज़ इफ एवरीवन फाइंड्स आउट अबाउट पापा जॉन्स न्यू पैन पिज़्ज़ा, गुड लक गेटिंग वन।
3: फॉर पिज़्ज़ा? हैव यू सीन इट? चीज़ ऑल अराउंड, edge to edge toppings, crispy garlic parmesan crust.
4: My mouth just watered.
5: Try the new pan pizza today. Papa John's, better ingredients, better pizza.
6: Now lease a brand new SUV from Jetour and Skoda with prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
7: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: Big 106.2. That's my song.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 10:08।
1: Bollywood.

0: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: Listen to her every day.
2: Mugembo! Khush hua!
3: We'll play the 5-second rule. It's a fun game. Acha, quickly tell me 3 pizza toppings. नहीं खाते पिज्जा विज्जा का शौक नहीं है?
4: नहीं.
3: अच्छा चलो मूवीज देखने का शौक तो होगा, तो 3 सलमान खान की मूवीज.
4: 3 सलमान खान की मूवीज. मुझसे शादी करोगी,
3: इनकी गाड़ी, मुझसे शादी करोगी में अटकी हुई है. आगे बढ़ो, शादी से आगे भी जिंदगी है यार. हर चीज के जवाब में मुझसे शादी करोगी. अच्छा 3 ब्रेकअप के गाने बता दो.
4: एक तो ब्रेकअप सॉन्ग है.
3: शेखर एक बात मुझे बताओ, 3 ऐसी क्वालिटीज जो आप अपनी होने वाली बीवी में ढूंढ रहे हैं.
4: वो अच्छी होनी चाहिए और घर वालों को ख्याल रखना चाहिए.
3: मैं कह रही हूँ एक ही क्वालिटी ढूंढो. नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है लड़की होनी चाहिए, बाकी आगे का आपको याद होगा.
5: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
6: It is 10:25 on the clock and let's take a look at 311. सबसे पहले production city के पास heading north going towards Port City, you'll find around 6 to 7 minutes का delay, that patch of traffic over there. इसके अलावा the bit of southbound traffic at E11 also shakes that road for as you cross Trade Center roundabout, and थोड़ा बहुत हल्का फुल्का traffic आपको मिलेगा at E11, 311 heading south going towards Dubai from Sharjah. आज ट्रैफिक ढूंढना पड़ेगा, ढूंढने पर ही मिलेगा. द बिट ऑफ नॉर्थ बाउंड ट्रैफिक एट दुबई साउथ इज वेल ऑन 311. एंड कैपिटल की बात करें अबू धाबी में, थोड़ा बहुत ट्रैफिक गोइंग टुवर्ड्स बनियास अगेन ऑन E11. दिस इज अराउंड मफरक इंडस्ट्रियल एरिया.
7: Now lease a brand new SUV from Jethort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
5: Big 106.2.

0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: It is 10:28 on the clock. I got Mohit with me on the phone line. Good morning, Mohit. क्या हाल है?
2: Good morning, Sid bhai. कैसे हो?
1: बिल्कुल बढ़िया. Weekend का क्या preparation चल रहा है?
2: अभी तो कुछ भी नहीं किया है preparation.
1: अभी तो काम पे हो. क्या काम करते हो आप, मोहित?
2: Sales.
1: Sales. वेरी गुड, वेरी गुड. मोहित, आपने बताया कि यू नेवर बीन फॉर अ स्टेज प्ले बिफोर. कभी कोई नाटक देखने नहीं गए आप?
2: नहीं, कभी भी नहीं गया.
1: अच्छा, चलो यार, सो देयर इज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग. डी फॉर ड्रामा जंक्शन पे होने वाला है. लास्ट टाइम मैंने आपको एक बहुत ही आसान सवाल पूछा था. एनएसटी ग्रेजुएट, मोटली प्रोडक्शन से, कौन से एक्टर का नाम याद आता है आपको?
2: नसरुद्दीन साहब.
1: एब्सोल्युटली करेक्ट. तो जब आप कोई नाटक देने गए नहीं है तो मॉटली के बारे में कैसे बता आपको, या बाकी सारे क्लू से समझ गए?
2: नहीं, मैंने एक्चुअली आपने वो वेनसडे मूवी के बारे में बताया था ना, वो सब देखा है तो मैंने एकदम से गेस लगा दिया कि वो एक्टर है और उनका प्रोडक्शन भी है तो वही होंगे.
1: वेरी नाइस. सो कांग्रेचुलेशंस, ये दो पासेस आपके हो गए. अब आप जाकर देखेंगे पुराने चावल.
2: नाटक नहीं देखा लेकिन बॉलीवुड का नॉलेज ज्यादा है.
1: अब बॉलीवुड का नॉलेज तो है. बॉलीवुड के ही कुमुद मिश्रा इस प्ले में होने भी वाले हैं. सो देयर इज अ बिट ऑफ बॉलीवुड कनेक्शन देयर एज वेल. और जाकर देखिए, मतलब मजा आ जाएगा ये देख के आपको कि रीटेक नहीं होता ना इसके अंदर, तो कितना बखूबी ये लोग परफॉर्म करते हैं वहां पर. यू जस्ट गोना लव दैट एक्सपीरियंस. सो डी फॉर ड्रामा द जंक्शन, और ये होने वाला है 26th and 27th of September. पुराने चावल जाकर देखेंगे मोहित. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग पार्ट इन आवर कॉन्टेस्ट. ऑलराइट, एक बार फिर आपको याद दिला दूं, कल और परसों 26th and 27th of September stories that will stay with you long after the curtain falls. Don't miss Patna ka superhero and purane chawal. D for drama ho raha hai the junction pe, and you can book your tickets right now on platinumlist.net. event made large by big 106.2.

0: मैं नाचू कब तलक यू आर आस्किंग आई मीन इफ यू आर फ्रॉम गुजरात देन यू नो के कब तलक इट यूज टू बी कम्प्लीटली ओवर नाइट पर उसके बाद देन द टाइम लिमिट्स केम आउट एंड कब तलक नाचू ऑफकोर्स नवरात्रि इज कमिंग अप तो टाइम लिमिट जब तक है तब तलक लेकिन नवरात्रि आ रही है तो शॉपिंग भी तो करना जरूरी है एंड दिस नवरात्रि एक्सपीरियंस अ फेस्टिव सूक एग्जीबिशन एंड इट्स ऑन द 26th ऑफ सेप्टेम्बर यानी कि कल सुबह के 10 से लेकर रात के 10 एट अलमास कॉन्फ्रेंस सेंटर राइट आउटसाइड GLT मेट्रो स्टेशन शॉप फ्रॉम 45 से भी ज्यादा एग्जीबिटर्स फीचरिंग फेस्टिव फैशन साड़ीज ज्वेलरी होम डेकोर फूड एंड सो मच मोर किड्स एक्टिविटीज एक्साइटिंग कॉम्पिटिशन UAE's Got Talent Season 8 का ग्रैंड फिनाले एज वेल प्लस चांसेस टू विन स्टेकेशंस एंड डिनर वाउचर्स एंट्री एंड पार्किंग इज टोटली फ्री इट्स ब्रॉट यू बाय किड्स आर अस विद डिवेलिशियस ब्यूटी सलून ज्वेलरी पार्टनर बियानी ज्वेल्स इवेंट मेड लार्ज बाय बिग 106.2
1: बिग 106.2

रहता तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखे कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। द बिग ब्रेकफास्ट ब्रॉट टू यू बाय पापा जॉन्स न्यू पैन पिज्जा। एंजॉय 360 डिग्रीज चीज, लोडेड टॉपिंग्स एंड अ क्रिस्पी पार्मेसान क्रस्ट। ऑर्डर नाउ, बिग 106.2. That's my song.

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
3: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
4: दो या चार?
3: चार।
4: कब तक वापस लौटाएगा?
3: यही 4-5 दिन में।
4: चार या
3: पाँच?
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7 to 9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2, the beat of Bollywood. More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ नैना। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कनें अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix, miss kiya gaya?
1: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
2: हाय शिरीष।
3: हाय। My vacation has been pending for a long time. Like I've been working in this company. Like no holiday for like about a year and a half.
2: लेकिन अगर आप चले जाते हो, मान लो आपका नाम एकदम ऐसे हो गया, लॉक हो गया, आप जा रहे हो बिग चेक इन टू जर्मनी, फिर आप छुट्टी कैसे लोगे?
3: इट इज अ स्टार्टअप, तो मुझे छुट्टी दे देंगे, लाइक आई एम वेरी क्लोज विद द मैनेजर।
2: एक सवाल पूछूंगी मैं जीके का, इट्स नॉट द जनरल नॉलेज, इट्स द जर्मन नॉलेज। विच एवरीडे प्रिंटिंग इन्वेंशन वॉज डेवलप्ड इन जर्मनी बाय गुटेनबर्ग अराउंड 1440s? योर ऑप्शंस आर ए द मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस, ऑप्शन बी द बॉल पॉइंट पेन, और ऑप्शन सी द टाइपराइटर।
3: Oh, I think it's the movable type printing press.
2: Sure.
3: Yeah, because I think I remember ballpoint pen being like somewhere else. Like I'm taking a chance between the other two options. I think it should be the movable press. It is a 50-50 for me.
2: But it's correct! थैंक यू सो मच शिरीष, आपका नाम जो है रजिस्टर हो चुका है। लेट्स सी आप ड्रॉ में जीतते हो या नहीं जीतते हो, बट यू आर वन स्टेप क्लोजर टू बिग चेक इन टू जर्मनी।
3: लेट्स गो, थैंक यू सो मच।
0: चीयर योर मिडडे मूड मंडे टू फ्राइडे 1 to 5 PM, द बिग मिक्स विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2, दैट्स माय सॉन्ग।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 1:09
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: A staycation from just 250 dirhams? Yes, really! I found the deal! Visit holidaymarket.ae or call 800-ALFRED.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज द बिग मिक्स एंड वीकेंड वाइब्स आर ऑल ओवर देयर. अब आपको सिनेमा में जाके पिक्चर देखनी है या फिर घर में बैठ के एकदम यू नो नूडल्स का बोल हाथ में पकड़ के पिक्चर देखनी, दैट डिपेंड्स अपॉन यू. पहली फिल्म जो सिनेमा में रिलीज हो चुकी है दैट इज कॉल्ड द वन. सिद्धार्थ मल्होत्रा तमन्ना भाटिया की ये फिल्म है एंड क्योंकि ये फोकलोर फैंटेसी है इसमें बहुत थ्रिल होने वाला है. दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. मैंने फिलहाल अभी तक पिक्चर नहीं देखी है. द सेकंड वन जो आप घर पे बैठ के देख सकते हो दैट इज डोंट बी शाय. अब आलिया भट्ट की पिक्चर कहूँ या ना कहूँ प्रोडक्शन उनकी है, उन्होंने एक गाना भी किया है इसमें एंड ऑफकोर्स वहीं से प्रमोशन हो रही है. देयर आर 4 न्यू एक्टर्स इन द फिल्म. लेकिन अगर आपको एक सीरीज चाहिए जो आप यू नो एकदम बिंज वॉच करते रहो 7-8 घंटे तक, मतलब बैठ रहो वीकेंड यही चाहिए अगर आपको, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है परिणीति चोपड़ा की फिल्म नहीं सीरीज विच इज कॉल्ड शक ट्रस्ट नो वन. अब इस सीरीज पे ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता वो तो यार देखने के बाद पता लगेगा. There's one more thing coming up this weekend जो आप बाहर जाके enjoy कर सकते हो. What is that? Gonna tell you in a bit. Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: 105.2, the beat of Bollywood.
1: You are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800 Alfred 24/7.
0: Listen to her every day.
2: Mugambo, khush hua.
3: Little Miss Sunshine, Sidra is here.
4: थैंक यू सो मच।
3: मेरा ना ड्रीम है कि मैं इतनी स्वीटली लोगों से बात करूं जितनी सिद्रा करती है।
4: नहीं, आप भी बहुत स्वीट हो।
3: मेरी टोन स्वीट नहीं है ना यार, मैं क्या करूं? आई थिंक पंजाबी खून है। मैं प्यार से भी बात करती हूं, लोगों को लगता है मैं चिल्ला रही हूं। फिलहाल सिद्रा विल प्ले दिस फन गेम विद यू, इट्स कॉल्ड द 5 second रूल। अब आप इतनी स्वीट है तो तीन इंडियन मिठाइयों के नाम। खत्म हो गया फटाफट, ठीक है। थ्री थिंग्स यू नोटिस इन अ गाय द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन यू सी हिम।
4: शूज।
3: लड़की साउंड सीधी करती है बट है नहीं। थ्री थिंग्स इफ यू कुड चेंज अबाउट योर मैनेजर।
4: हेयर स्टाइल
3: मैनेजर के हेयर स्टाइल से क्या लेना देना है सिद्रा?
4: इट्स वेरी चंपू।
3: ये देखो, भरे रेडियो में आके इन्होंने अपने मैनेजर को चंपू बोला है।
0: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: There's heavy congestion on Dubai Sharjah corridor, particularly along Al Ittihad Road E11 around Al Nada, Al Ghaziz and towards the Sahara Center. E311 पर आपको patch traffic मिलेगा around Mohizna, Al Ghaziz and towards Sharjah. Al Ghuz, Al Safa, Umm Sukaim, relatively अच्छा खासा traffic नहीं है. It's smooth there. कहीं और फंसे हो let me know, call करके 800-1062 पर.
6: Now lease a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: Big 106.2.
7: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरज़ू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
0: The Big Mix with Avni, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: driving. Now lease a brand new SUV from Jetworth and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. This is the Big Mix and आपके वीकेंड प्लान सॉर्ट कर रही हूँ. एंड अभी आप जीत सकते हो वन कपल टिकट फॉर दिस थिएटर शो पटना का सुपर हीरो जो होने वाला है द जंक्शन में. डी फॉर ड्रामा एट द जंक्शन ब्रिंग्स यू टू अक्लेम्ड हिंदी प्लेस दिस वीक 26 एंड 27th ऑफ सितंबर को. ये ऐसी कहानियां हैं जो थिएटर खत्म होने के बाद भी ना आपके साथ घर जाएंगी. आपके साथ बुक कर सकते हो आप टिकट्स राइट नाउ ऑन platinumlist.net. लेकिन अगर आपको ये टिकट जीतनी है इस सवाल का जवाब देना होगा. विच फेमस मिर्जापुर एक्टर वर्कड एज अ प्रोफेशनल थिएटर आर्टिस्ट इन बिहार एंड दिल्ली आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम NSD. कॉल करना है मुझे आपको 800-1062 पे अपना जवाब देने के लिए. सवाल वापस से सुन लो. विच फेमस मिर्जापुर एक्टर वर्कड एज अ प्रोफेशनल थिएटर आर्टिस्ट इन बिहार एंड दिल्ली आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम NSD. 800-1062 इज द नंबर. और ये जवाब देने पर आप जीत सकते हो वन कपल टिकट्स फॉर द शो पटना का सुपर हीरो.

0: यार तुमने कोई बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है।
1: मुझे खुद का पता था यार, अगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, एंड मैंने पूछा था एक सवाल. सवाल वापस से रिपीट कर देती हूँ, लेकिन ओ एक सेकंड, फोन उठा लेती हूँ. हाय
2: हाय
1: हाय, कौन बात कर रहा है?
2: मुकेश.
1: मुकेश, विच फेमस मिर्जापुर एक्टर हैज वर्कड एज अ प्रोफेशनल थिएटर आर्टिस्ट इन बिहार एंड दिल्ली आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम NSD? आप बताइए अपना जवाब.
2: पंकज त्रिपाठी.
1: श्योर?
2: यस.
1: मिले हो आप उनसे? आपने उनसे पूछा है?
2: नहीं, आई हैव सीन द मिर्जापुर सीरीज.
1: तो उसमें तो बहुत सारे एक्टर हैं.
2: बट पंकज त्रिपाठी.
1: दैट्स एक्चुअली द करेक्ट आंसर. क्या करते हैं मुकेश आप?
2: I am a engineer working with the government of Dubai.
1: Oh wow, that's nice. लेकिन movies का शौक है आपको?
2: हाँ, बहुत देखते हैं movies.
1: बहुत देखते हैं. Why is that like every engineer ever? क्यों उनको शौक किसी और चीज का होता है लेकिन वो बन इंजीनियर जाते हैं?
2: This is by default actually. पहले होता था कि इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा बच्चा, अब ये तो चेंज है ना.
1: अगर आपको मौका मिले मुकेश वापस से कुछ और बनने का, तो क्या बनोगे?
2: I will be more on the creative side only. Maybe architect.
1: But still an engineer. Okay, that's nice. You win couple tickets for this theater show, Patna Ka Super Hero. Congratulations.
2: Thank you so much.
1: Patna Ka Super Hero and Purane Chawal happening tomorrow at the Junction, 26th and 27th of September. Agar tickets book karwani hai is theater show ki, abhi book karwa sakte ho platinumlist.net se. Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 2:06।
1: Bollywood.

0: pack your bags. I found unbeatable holiday deals, staycations, visas, and much more. Your next escape could be closer than you think. Visit holidaymarket.ae.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bowery and Cora. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 में मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड दिस इज योर चांस टू गो टू दिस ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप बिग चेक इन टू जर्मनी. आपको करना क्या है, टाइप करना है बिग चेक इन स्पेस योर नेम और भेजना है इस व्हाट्सएप नंबर पर 0543091062. रैंडमाइजर आपका नाम पिक करेगा, मैं करूंगी आपको कॉल एंड खेलेंगे हम एक जीके का सवाल, विच इज नॉट द जनरल नॉलेज, इट्स द जर्मन नॉलेज. अब सोचो यार, एक हल्के फुल्के से क्वेश्चन का जवाब देकर अगर आप चल लो यार इस बिग चेक इन टू जर्मनी में, क्या बढ़िया बात. हम तो जा रहे हैं यार, आप भी साथ में जाना चाहते हो, प्लस वन टिकट करवाना चाहते हो, ऑल यू हैव टू डू इज टाइप बिग चेक इन स्पेस योर नेम, भेजो इस व्हाट्सएप नंबर पर 0543091062.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bowery and Cora. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: डांस नहीं करना, वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: Now lease a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
2: Big 106.2.
1: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bowery and Kora. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
3: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
4: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, एंड आज मैंने कॉल किया है श्रेया को, और शुड आई से डॉक्टर श्रेया। हाय श्रेया।
5: हाय हाय हाय अवनी, हाउ आर यू?
4: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
5: मजे में।
4: सो आर यू अ डॉक्टर डॉक्टर या फिर पीएचडी वाली डॉक्टर?
5: नहीं नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ।
4: अच्छा मुझे बताओ, डॉक्टर्स को वेकेशन साल में कितनी बार चाहिए होती है?
5: आइडियली स्पीकिंग महीने में तो एक बार चाहिए होती है।
4: महीने में एक बार? तो आप कह रहे हैं 12 महीने में 12 वेकेशन। ओके ओके।
5: हाँ लेकिन अब क्या करें, अभी डिमांडिंग है हमारा जॉब, तो कभी कभी चाहिए होता है, अब क्या कर सकते हैं।
4: अच्छा, द लास्ट वेकेशन यू वेंट टू?
5: लास्ट वेकेशन आई थिंक मैं गई थी श्रीलंका, आई थिंक। या
4: कब गए थे? फेब्रुअरी
5: में। इसी साल गए? हाँ इसी साल गए थे।
4: तो दो दो छुट्टी तो ठीक है यार, एक साल की वैलिड है।
5: हाँ चल सकता है, ऑफ कोर्स वैलिड है।
4: बट लेट्स सी आप हमारे साथ जर्मनी जा पाते हैं या नहीं। मैं आपसे एक जीके का क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, व्हिच इज द जर्मन क्वेश्चन, एंड लेट्स सी आपको वो आता है या नहीं आता है। ओके यू रेडी?
5: ओके।
4: Which German city is world famous for its massive port, canals and maritime history in the north? Your options are A, Hamburg, B, Munich, C, Stuttgart.
5: Munich.
4: You sure?
5: Yeah. I'm taking a guess actually.
4: You should guess more.
5: Hamburg.
4: Pakka?
5: Okay. I think I'll stick to Munich.
4: I think so. आप ना सही जा रहे थे, अब आप Munich पे मुड़ गए हो।
5: आप कंफ्यूज कर रहे हो मुझे अभी। ओके आई थिंक आई स्टिक टू फाइनल वन। आई थिंक आई स्टिक टू अ फाइनल वन। आई विल गो फॉर हैमबर्ग ओनली।
4: एंड दैट्स करेक्ट।
5: ओके।
4: ऐसे इतने विश्वास के साथ बोला है ना शेना कि मैं हैमबर्ग जाऊंगी, मतलब आप ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मैं तो जर्मनी जा ही रही हूँ, अपना अपना आप देख लो। Congratulations.
5: Thank you so much. Thank
4: आपका
5: you.
4: नाम रजिस्टर हो चुका है। You are one step closer to go with us to Big Check-in to Germany.
1: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bowery and Kora. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
6: पूरे देश को पगला दूंगा। अभी तो कुछ पेश किया है। सुनो।
7: Money follows, my brother.

0: यार तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है।
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज द बिग मिक्स. एंड अगर आपको भी कभी क्रेडिट कार्ड लेना है, पर्सनल लोन लेना है या फिर मॉर्गेज के बारे में जानना है तो आप किसके पास जाते हो यार? कभी किसी को कॉल करते हो, भाई से पूछते हो, भैया से पूछते हो, पापा से पूछते हो, मम्मा से पूछते हो, लेकिन देयर इज जस्ट वन स्टॉप फॉर यू, दैट्स creditmarket.ae. यू ऑलरेडी नो Alfred फ्रॉम insurancemarket.ae. नाउ Alfred कैन हेल्प यू कंपेयर क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स एंड मॉर्गेजेस. बस आपको विजिट करना है creditmarket.ae पर या फिर कॉल कर सकते हो 800 Alfred पर.
2: तुम जो आए जिंदगी में बात
1: अब तो बन गई है बात creditmarket.ae के साथ. Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 3:08। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: जरा सा मूड मौसम रूठा होता है, मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ खाने पे जाता है यार।
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, दिस इज द बिग मिक्स एंड खेलने वाली हूँ मैं आपके साथ खाओ पियो ऐश करो, बिकॉज खाना एक ऐसी चीज़ है यार जिंदगी में जो आप खुश हो तो भी वहीं पे जाता है दिमाग, उदास हो तो भी ठीक करने के लिए मूड वहीं जाता है दिमाग, तो वाई नॉट टू डिस्कस दैट फूड कि आप दोनों में से कौन सी चीज़ चूज करने वाले हो, खाओ पियो ऐश करो। If you think you're a better and a bigger foodie than me, message करो मुझे इस WhatsApp number पर 0543091062। मैं खेलूंगी आपके साथ एक food का rapid fire round, जो भी बहुत जल्दी जल्दी answer करेगा वो जीतेगा आज की open movie tickets। Message करना है 0543091062। Until then keep it locked to Big 106.2।

0: Hollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Listen to her every day.
2: Mugembo! Khush hua!
3: Little Miss Sunshine, Sidra is here.
4: थैंक यू सो मच।
3: मेरा ना ड्रीम है कि मैं इतनी स्वीटली लोगों से बात करूं जितनी सिद्रा करती है।
4: नहीं, आप भी बहुत स्वीट हो।
3: मेरी टोन स्वीट नहीं है ना यार, मैं क्या करूं? आई थिंक पंजाबी खून है। मैं प्यार से भी बात करती हूं, लोगों को लगता है मैं चिल्ला रही हूं। फिलहाल सिद्रा विल प्ले दिस फन गेम विद यू, इट्स कॉल्ड द 5 सेकंड रूल। अब आप इतनी स्वीट है तो तीन इंडियन मिठाइयों के नाम। खत्म हो गया फटाफट। ठीक है, 3 things you notice in a guy the very first time when you see him.
4: Shoes.
3: लड़की साउंड सीधी करती है बट है नहीं। 3 things if you could change about your manager.
4: No, he's too sweet, but hairstyle. Yeah.
3: मैनेजर के हेयरस्टाइल से क्या लेना देना है सिद्रा?
4: It's very चंपू।
3: ये देखो, भरे रेडियो में आके इन्होंने अपने मैनेजर को चंपू बोला है।
0: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
5: यार तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है।
6: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
0: You are listening to The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
9: सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा। नहीं नहीं भैया, तब भी हमें इतनी 50 डिग्री वाली गर्मी लग रही है। ह्यूमिडिटी लेवल्स जो है 72% पे चल रहे हैं विद टेम्परेचर 35, एंड क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है इट एक्चुअली फील्स लाइक 50 डिग्रीज।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Fast track song of the hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड मेरे साथ है आज उषा. हाय उषा.
3: हाय अवनी, हाउ आर यू?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? लंच कर लिया आपने?
3: एब्सोल्युटली डन.
2: क्या खाया लंच में?
3: सैंडविच
2: लंच में.
3: दैट्स माय फेवरेट फूड.
2: ओके वेल लेट्स सी कि आपका फेवरेट फूड एक्चुअली में क्या है. अपनी फेवरेट्स में से आप चूज कर पाते हो या नहीं? I'll give you two options, two food options. आपको दोनों में से रैपिडली कोई एक चूज करना. आर यू रेडी? व्हाट वुड यू चूज, पाव भाजी या छोले भटूरे?
3: पाव भाजी.
2: पाव भाजी या राजमा चावल?
3: पाव भाजी.
2: पाव भाजी या बटर चिकन?
3: आई एम अ वेजिटेरियन सो पाव भाजी.
2: पाव भाजी या पनीर टिक्का?
3: पाव भाजी.
2: पाव भाजी या इडली सांभर?
3: इडली सांभर.
2: इडली सांभर या मसाला डोसा?
3: इडली सांभर.
2: ओके, इडली सांभर या पानीपुरी?
3: पानीपुरी.
2: पानीपुरी या दाबेली?
3: पानीपुरी.
2: पानीपुरी या अमृतसरी कुलचा?
3: पानीपुरी.
2: पानीपुरी या पकौड़े?
3: पानीपुरी.
2: पानीपुरी या मंचूरियन?
3: पानीपुरी.
2: पानीपुरी या पिज्जा?
3: पानीपुरी.
2: पानीपुरी या दाल मखनी विद गार्लिक नान?
3: पानीपुरी.
2: ओ माय गॉड, पानीपुरी से. ये आपने आज लंच में पानीपुरी क्यों नहीं खाई भाई? हाउ कैन सैंडविच बी योर फेवरेट फूड, बताओ मुझे.
3: I don't know, I'm a fussy eater, I guess.
2: अच्छा, अब मुझे आपने बता दिया कि आपने लंच में सैंडविच खाया था. सुबह में क्या खाया था? ब्रेकफास्ट में क्या खाया था?
3: Actually, I'm not a breakfast person, so I had some fruits and some protein powder kind of thing.
2: अच्छा, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए उषा कि आपको 7 दिन हर मील एक ही डिश खानी है, वो डिश कौन सी होगी?
3: Probably भेल.
2: भेल?
3: Yeah.
2: I thought you would said पानी पूरी. आप उससे ऊपर जा ही नहीं रहे थे. मैं तो फिलहाल पानीपुरी के बारे में सोच नहीं पा रही हूँ. इट्स लाइक द कफ सीजन फॉर मी, सो आई विल पास पानीपुरी, बट आई विल पास यू एज वेल. यू विन ओपन मूवी टिकट.
3: थैंक यू सो मच.
2: थैंक यू उषा फॉर कॉलिंग.
3: थैंक यू सो मच. फन. Thanks, love you, bye.
2: If you want to play Khao Piyash Karo with me, all you have to do is give me a WhatsApp text on 054-309-1062. Until then, keep it locked to Big 106.2.

सोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: बिग बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग जियो
2: ऑल माय फेवरेट म्यूजिक इन वन स्पॉट
1: वीकडेज 9 PM टू 12 AM ऑन बिग 106.2 brought to you by insurancemarket.ae big

0: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
1: द बिग मिक्स विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड वीकेंड वाइब के साथ एक और अच्छी खबर लेके आई हूँ आपके लिए. यू कैन नाउ लीज अ ब्रांड न्यू एसयूवी फ्रॉम जटोर एंड स्कोडा विद प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम 1,999 दिरहम्स पर मंथ फॉर अ 12 मंथ प्लान. बस विजिट करना है selfdrive.ae पर, TNC अप्लाई. एंड अगर उसके बावजूद आपको वो बोलता है ना कि यार नहीं हम नहीं जा सकते हैं ड्राइव पर, तो आपको ये नहीं बोलना है. इन फैक्ट यू शुड टेल हिम और हर कि भाई इतने अच्छे ऑफर के साथ गेट अप. Back coming your way after this one. Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे सारे को, कह के लेंगे उसकी।
2: 106.2

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 4:06।
1: Bollywood.

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: इट्स 35 डिग्रीज आउट देयर विद 71% ह्यूमिडिटी, लेकिन जो हमारे स्टूडियो में मुंबई कर बैठे हुए हैं उनको सेम लग रहा है, बिकॉज ह्यूमिडिटी सेम होती है मुंबई में। और आदत इनको एक पानी पीने की भी है, जो हमें भी होनी चाहिए। कीप ड्रिंकिंग वाटर।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me.

0: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। आपके ब्लैक हेड भी हटा सकती हूँ मैं। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
1: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड कल होने वाला है एक थिएटर शो जिसके बारे में बात कर रही थी पटना का सुपर हीरो एंड जो पटना का सुपर हीरो है द मेन लीड द ओनली एक्टर प्रेजेंटिंग दिस थिएटर इज विद मी घनश्याम लालसा. आप पहले मुझे बताओ कि आपने ये किया कैसे.
2: मैंने किया कैसे मतलब अकेले
1: हाउ कैसे होता है ये.
2: मैंने देखा है इसके पहले भी बहुत सारे एक्टरों को सोलो परफॉर्मेंसेस करते हुए. मेरे मन में था हमेशा से कि मैं भी करूँगा कभी, लेकिन वो चांस कब आएगा कब प्रिपेयर. बहुत सडनली मेरे दोस्त हैं निहाल पराशर जिनको मैं थिएटर से जानता था, तो एक रात उन्होंने मुझे एक कहानी लिख के भेजी कि आप ये पढ़िए, आपको सोच के लिखी है ऐसा. तो मैंने वो कहानी इतनी अच्छी थी कि ख़त्म कर दी मैंने विद इन 30 मिनट्स. और मैंने कुमुद मिश्रा जो हमारे को फाउंडर साथ में हम काम करते हैं उनको भेजी कि मुझे ही बहुत अच्छी लगी आप बताइए. उन्होंने भी उसी रात पढ़ ली. हम दोनों एक्साइटेड हो गए और निहाल उसका नाटक बनाना चाहते थे. फिर हमारी मीटिंग हुई और वो पेपर पे इतनी स्ट्रांग और इतनी इंटरेस्टिंग थी कि डिसाइड किया कि लेट्स ट्राई.
1: और ये एक मेरा आर्टिस्ट वाला क्वेश्चन है बिकॉज़ आई हैव बीन अ थिएटर आर्टिस्ट थोड़े टाइम के लिए
2: जी,
1: लेकिन
2: जी.
1: मैंने वो 11 मेंबर्स की टीम के साथ या स्किट 5-6 मेंबर्स की टीम के साथ परफॉर्म किया जिसमें एक डायलॉग को हम इतनी बार रिहर्स कर लेते हैं एंड देन वी लूज द एसेंस कि यार शुरू कैसे किया था एंड में एग्जैक्टली कैसे बोला डायलॉग. लेकिन यू आर परफॉर्मिंग सोलो परफॉर्मेंस, तो एक तो इतना डायलॉग याद करना, दूसरा हर में वेरिएशन लेकर आना फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स, कैसे होता है ये.
2: मतलब एक एंसेंबल के साथ काम करना और एक सोलो प्ले में अकेले स्टेज पे होना है तो बहुत डिफरेंस. और वो जब तक आप करो ना तब तक समझ नहीं आता उसके उसके जो ट्रिक्स हैं उसके जो चैलेंजेस हैं उसके जो मज़े भी हैं. मतलब उसका जो अच्छा बुरा है वो आपको बिना किए नहीं समझ आता. मतलब जब दो सोलो करने वाले आपस में बात करते हैं तब वो बताते हैं कि पता है आज ये हो गया मुझे हो गया. तो वो जैसे मैं मेरे दोस्त हैं मानो कॉल, वो त्रासदी इस पटना के बाद उन्होंने ये प्ले बनाया अपना. उनका एक सोलो है त्रासदी. तो अब मैं और वो जब सोलो और शोज की बात करते हैं तो हम लोगों को मुझे पता है कि ये हम दोनों ही समझ पा रहे हैं ये वाली बात को कि आज ऐसा हो गया. तो बहुत इंटरेस्टिंग है. जैसे आपके पास बाकी जब ऑनसाम्बल में मैं कुछ भूल गया मुझसे कुछ आगे पीछे हो गया बट देर इज समवन सम देर इज योर को एक्टर हु इज आल्सो देयर कि हम मैनेज कर लेंगे. और उसका गेम का मजा वही है कि अकेले टेनिस खेल रहे हो और साथ में खेल रहे होगा खेल है ना. तो वो है तो बहुत इंटरेस्टिंग. वो
1: पर ये भी होता है ना कि अकेले जब परफॉर्म कर रहे हो तो आपने गलती करी है, किसी को नहीं पता लगा कि आपने गलती करी. नॉट प्रॉबली नॉट इवन द स्टेज, उनको भी नहीं पता कि गलती हुई है बिकॉज यू आर एक्टिंग सोलो.
2: यस यस ऐसा हुआ है कि नहीं पता चली पर आपके साथ जो टीम है जैसे साउंड पे जो है या जो लाइट्स पे वो लोग. पटना के बहुत सारे शोज हो गए अभी 70-75 से ज्यादा हो गए तो उनको भी ऐसे साउंड से प्ले याद होता है. अगर मैंने कुछ चेंज किया आज हल्का सा अपने फन के लिए किया जिसको ऐसे बोल के देखा जाए करके तो वो भूल सकते हैं क्योंकि अरे ये क्या हो गया वो क्या हो गया. तो उनको हमसे ज़्यादा एक अवेयरनेस होती है और वो बोलते हैं आज वहाँ कुछ हुआ था ना. तो आप झूठ नहीं बोल सकते, बोलते हाँ वहाँ थोड़ा आज एक हल्का आगे पीछे हुआ था या उसी वक्त ऐसा हो गया था या कुछ बंद हो गया था.
1: पकड़े गए.
2: हाँ लेकिन नहीं भी पता चलता है कई बार. आपने खेला, आप ही ने उसको फिक्स किया, आप ही ने लपेटा, आप ही ने कर दिया. तो ऐसा.
1: अच्छा मेरा एक और क्वेश्चन था, पटना का सुपर हीरो में जो आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो स्लैंग यूज कर रहे हो पटना की कर रहे हो.
2: हाँ जी बिहारी बोलने की कोशिश करता
1: हूं. तो फिर अगर आपको लिसनर्स को बताना है एक बार कि आप पटना का सुपर हीरो देखने आ जाओ तो उस स्लैंग में कैसे बोलोगे.
2: हाँ तो कि नाटक वाटक देखते हैं तो आ जाइए, यहाँ दुबई में लगा है, बिहार का जितना आदमी है सब लोग टाइम निकाल के आइएगा, पटना का सुपर हीरो दुबई में लग गया है.
1: पटना का सुपर हीरो हैपनिंग टुमारो एट द जंक्शन. टिकट्स मिल जाएंगी आपको platinumlist.net पर. और अगर जीतनी है टिकट्स कीप इट लॉक टू बिग 106.

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2 The Beat of Bollywood.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. This is the Big Mix and मेरे साथ हैं घनश्याम लालसा जी, a great actor. And मुझे ना बड़ा मजा आता है जब मैं एक एक्टर से ऐसे सवाल पूछती हूँ कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं. So I'm gonna give you two options. It's a rapid fire. You have to choose between these two options. Are we ready?
2: Yes.
1: क्योंकि आपको बहुत जल्दी जल्दी आंसर करना है. ठीक है,
2: कोशिश करूंगा.
1: मैं टाइमर भी लगा देती हूँ.
2: लगा दे.
1: ताकि आपको जल्दी हरीनेस हो आपको. ठीक है. What would you choose? Bollywood or theater?
2: Theater.
1: Comedy or drama?
2: Drama.
1: Hero or villain?
2: Villain.
1: Stage or camera?
2: Camera.
1: Rehearsal or improvisation?
2: Rehearsals.
1: Mumbai or Dubai?
2: Mumbai.
1: Early call time or late night shoot?
2: Early call time.
1: One take or 20 retakes?
2: One take.
1: SRK or Salman?
2: SRK.
1: Okay. OTT or theater?
2: Theater.
1: Dialogue or silence?
2: Silence.
1: Method acting or instinct?
2: Instinct.
1: The last one, very difficult one. Fame or good work?
2: Good work.
1: ये जो साइलेंस था ना. बट आप पटना का सुपर हीरो बन चुके, तो फेम तो मिल ही गया आपको.
2: हाँ, एक तरह की थिएटर की एक फेम होती है जिसमें
1: अपना एक
2: थिएटर की दुनिया में
1: अपना एक चार्म भी है. ओके, वेल, अगर आपको पटना का सुपर हीरो का ये गुड वर्क देखना है, कल हो रहा है यहाँ पे शो एट द जंक्शन, पटना का सुपर हीरो. एक और शो हो रहा है पुराने चावल, अगर आपको उसकी भी टिकट्स चाहिए, ऑल यू हैव टू डू इज बुक योर टिकट्स फ्रॉम platinumlist.net. एंड कल मिलते हैं फिर, वीकेंड प्लान्स सॉर्ट करते हुए घनश्याम लाल.
2: जरूर आइए.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 5:09।
2: Bollywood.

0: तुम बीमार हो?
1: नो।
0: तो लेती क्यों?
1: मेरे बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं।
0: कैसे है सेंसेशंस?
1: सेंसेशंस जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, टपकपाहट, भरभराहट, थरथराहट, टपकपाहट, भरभराहट, टपकपाहट, झटपटाहट, झटपटाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट,
2: झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट,
3: पूरे देश को पगला दूंगा। अभी तो कुछ पेश किया है, सुनो। नाम या दाम?
4: नाम।
5: Money follows, my brother.

0: के पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया पिछले
1: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: नहीं, ये तो मुफ्त है।
2: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
1: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं। नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening. This is the Big Thrill of Mansi. Very thrilled, very excited. Joining us in this hour are two of my favorite actors. If you love Mirzapur, you love Rockstar, you will love them this weekend. Main baat kar rahi hu purane chawal ki cast. जो इस वक्त स्टूडियो में है कुमुद मिश्रा सर एंड साथ में है शुभ्र ज्योति सर हमारे साथ एंड यू नो इनकी हिंदी इतनी अच्छी है कि मैं इस वक्त काफ़ी ओवरवेल्म्ड हूँ क्योंकि इतनी हिंदी मैंने केबीसी के बाद आज ही सुनी है. सो वी गॉट कुमुद सर एंड शुभ्र ज्योति सर जॉइनिंग अस टॉकिंग अबाउट पुराने चावल दैट्स हैपनिंग टुमारो एंड डे आफ्टर हियर इन द यूएई. सारी डिटेल्स बहुत सारी गप्पे शप्पे यू स्टे राइट हियर.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक, गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 6:11।
2: Bollywood.

0: flights, hotels, transfers, visas, leave it to me. Everything your holiday needs, sorted. Visit holidaymarket.ae or call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: All right, this is The Big Thrill. Mansi, very thrilled, very excited. Two of my favorite people in the studio. And of course, you also get a chance to meet them, see them over the weekend. We've got an exciting weekend planned. Ek bahut kamal play jo hai wo Dubai aaya hai. D4 Drama at the Junction aapke liye lekar aaye hain Purane Chawal. And the OGs are here. We've got Kumud sir and Shubhrato sir in the studio. Jinhone aate hi mujhe aise diya ki yaar ye ladki jo hai mere matlab kaan ke parde aaj phaad ke rahegi. Hai na sir?
3: नहीं बिल्कुल नहीं।
2: बट मैंने वार्म वेलकम देने की कोशिश की थी, ज्यादा वार्म हो गया शायद।
3: नहीं, बहुत सही था, बहुत सही था। हम लोग जाग गए, थोड़ा झपकी लेके आ रहे थे क्योंकि सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं तो नींद पूरी नहीं हुई थी। तो ये जो इतना जो गर्मजोशी के साथ आपने स्वागत किया, मजा आ गया।
2: थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक ऐसा ही स्वागत आपका दुबई भी करेगा। आप पुराने चावल यहाँ लेकर आ रहे हैं। एंड यू नो ये प्ले जो है, जितना मैंने पढ़ा है, ये इंस्पायर्ड है फ्रॉम द सनशाइन बॉयज। तो यू नो टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने टिकट्स खरीदी हैं, जिन्होंने यहाँ से टिकट्स जीते हैं, अगर आप उन्हें एक छोटी सी झलक देना चाहें। मुझे इतना पता है कि सर थोड़ा सा खड़ूस वाला रोल प्ले करते हैं इसमें, एंड रियल लाइफ में आप ऐसे नहीं लग रहे हो वैसे।
3: पता नहीं रियल लाइफ में खड़ूस तो दूसरे लोग बताएंगे, घर वाले बताएंगे। नहीं, वैसा तो नहीं हुआ अभी। अभी उस स्टेज पर हम लोग पहुंचे नहीं है, बहुत भी नहीं हालांकि।
2: बट कितना मतलब यू नो वो केमिस्ट्री तो बहुत एफर्टलेस है आप दोनों की, क्योंकि वो दोस्ती है। बट कितना आप लोग रिलेट करते हैं अपने अपने कैरेक्टर्स से? आप इतने सारे कैरेक्टर्स ऑफ कोर्स प्ले करते हैं, बट थिएटर एंड ओटीटी सिनेमा बहुत अलग होता है। थिएटर में कोई रीटेक नहीं होता है, जस्ट लाइक रेडियो, जो हो गया वो हो गया।
3: बिल्कुल।
2: तो कितना रिलेट करते हैं सर, आप बताएं।
4: नहीं, बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं एक तरीके से। ये है, एक तो दो परफॉर्मर्स की कहानी है, उस वजह से रिलेटेबल है। और दूसरी बात ये है कि ऐसे दो लोगों की कहानी है जिनकी शायद माशरे को अब ज़रूरत नहीं रही है। तो देर इज़ अ पॉइग्नेंट एंड टू दिस वेरी वेरी ह्यूमरस कॉमिक स्टोरी। तो हम तो जिस तरह के लोग हैं, हम उस बात से रिलेट करते हैं कि दो ऐसे लोगों की कहानी है, आखिरकार सारे हंसी मजाक सारी चीज़ों के बावजूद, जो खुद भी शायद अपना रेलिवेंस ढूंढ रहे हैं, शायद वक्त की वजह से और वक्त गुजर जाने की वजह से वो एक ऐसे सिचुएशन में पहुंच गए हैं, ऐसी उम्र में पहुंच गए हैं जहां पे जिसको हिंदी में कहते उपयोगिता, वो उपयोगिता शायद उनकी ख़त्म सी हो गई है। अब एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे की कई सारी बातें पसंद नहीं करते, लेकिन एक दूसरे की आदत है। एक दूसरे के बिना उनकी ज़िंदगी गुजरती भी नहीं। ऐसे दो लोगों की कहानी है।
2: अगर हम टाइटल की बात करें, ये सवाल मेरा आप दोनों से है। लोग ना पुराने चावल को बहुत नेगेटिवली लेते हैं। अब यू नो हम मिलेनियल्स हैं, हमारे ऑफिस में जेंजीज हैं, एक एज फैक्टर को ना लोग बहुत नेगेटिवली लेते हैं। अरे ये तो पुराने चावल हैं। आप किसी कंपनी में 8-9 साल काम कर लो तो जो नए लोग आते हैं वो ये बोलते हैं। पर मुझे लगता है कि पुराने चावल इज़ नॉट अ नेगेटिव टर्म, इट्स एक्सपीरियंस, या आपका जो इतने साल का तजुर्बा है वो आता है। सो दिस ऑल्सो शोज और टचेज द टॉपिक ऑफ एजिज्म, जो काफ़ी है जिंदगी, रोज़मर्रा की जिंदगी में भी। तो आपके हिसाब से पुराने चावल क्या है, द वर्ड?
3: आप खुद ही बता चुके हैं।
2: नहीं, बट
3: अनुभव है, अनुभव है। और उस अनुभव के साथ जैसे जैसे आप जीवन जीते जाते हैं और उसमें अच्छा बुरा कड़वा मीठा सब इकट्ठा होता जाता है, और बस वो फिर आप पुराने चावल हो जाते हैं। मज़ेदार चीज़ क्या है कि ये लोग जिस उम्र में हैं, जैसे हमने इसका नाम पुराने चावल, असल में बहुत ह्यूमरस उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है कि बहुत गाढ़ा आदमी है, बहुत बहुत बहुत अनुभव मतलब खेला खाया आदमी है, है ना, चलता पुर्जा है, जो कुछ भी कह लो आप। तो ये दो ऐसे चरित्र हैं जो जो तमाम जीवन जीने के बाद उनकी जो अपनी जो बेसिक कैरेक्टर चारित्रिक विशेषताएं हैं ना जो, वो बरकरार हैं। तो ऐसा नहीं है कि अनुभव के साथ हम अच्छे इंसान बन गए हैं, बहुत अच्छे इंसान बन गए हैं, बहुत सुलझे इंसान बन गए हैं। अगर हम चिढ़ंकू हैं तो चिढ़ंकू हैं, वो हमारा चरित्र जाएगा नहीं। अगर एक आदमी है जो शक करता है तो शक करता है, वो और उस उम्र तक वो शक भी पक रहा है, वो चिढ़न भी पक रही है। तो हमने इसको बहुत पकाया है इस नाटक में, कोशिश की है।
2: अगर दोस्तियां एक बार खराब हो जाए दो दोस्तों के बीच, क्या वो वापस आ सकते हैं साथ, फिर से वैसी दोस्ती की शुरुआत हो सकती है?
4: शुरुआत नहीं होती, जहां रुके थे वहीं से फिर से शुरू हो जाती है। असल में कोई शुरुआत नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तियों में, और दोस्ती मतलब ये दोस्ती शब्द इट्स सच अ लोडेड वर्ड, यू नो, इसको बहुत ज़्यादा हमारी हिंदी फिल्मों में और ऐसे में उसको रोमांटिसाइज भी बहुत किया है। असल में आपको किसी के साथ रहना या किसी के साथ जीना, किसी को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाना, इसकी धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, उसके बिना चलता नहीं है काम। वही दोस्ती टिकती है मुझे लगता है, बाद में जाके उसको अगर दोस्ती कहें तो। जैसे कि मुझे लगता है हस्बैंड वाइफ में एक उम्र के बाद दोस्ती ही होती है। बहुत झगड़ते हैं, बहुत लड़ते हैं, गीला टावल पहन के बाथरूम से बाहर आके टावल बिस्तर पे क्यों छोड़ देते हैं, वो वाली बातें, छोटी छोटी जो मंडेन बातें हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी की, वो बातें एक दूसरे की इरिटेट भी करती हैं उन दोनों को। लेकिन वो उस इरिटेशन और उन सारी चीज़ों के परे ये बात ज़रूर होती है कि एक दूसरे के बिना जो है ना, वो अपनी ज़िंदगी को इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है दोस्ती भी वैसी होती है। मुझे मान लीजिए कुमुद जी या मेरा, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, अभी कई साल हो गए हम लोग साथ में लगातार काम कर रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरी हर बात उनको पसंद आएगी, और इस बात को मैं एक्नॉलेज भी करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि साथ काम करते हैं ज़िंदगी का, और हमारे ज़िंदगी का जैसे इंक्रीजिंगली काम जो है ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बनता गया है, तो इस वजह से हमारा साथ में मिलना जुलना, उठना बैठना, और फिर एक दूसरे के जो क्वर्क्स हैं, जो बुरी आदतें भी है, उनको उनको एक तरीके से कबूल कर लेना, उससे दोस्ती बनती है और फिर वो बरकरार रहती है आगे तक।
3: और मेरा इसमें, मैं बहुत गलत हो सकता हूँ, लेकिन मज़ेदार चीज़ क्या है कि जब सपोजिटली जो दोस्त हैं वो दुश्मन बन जाते हैं, दोस्त तब भी रहते हैं क्योंकि वो दुश्मनी में दोस्त रहते हैं। दुश्मनी जीना भी अपने आप में एक आदत बन जाती है
4: जी, बिल्कुल
3: है ना। मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, वो बात नहीं करना सालों तक आपको जोड़े रखता है, वो तार जो है ना, वो तार जोड़े रखती है, और वो उसका उसका उसका उसका चरित्र बदल जाता है, लेकिन आप उसे कट नहीं जाते अगर आप जेन्युइनली एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। तो आपकी चॉइस है कि आप उसको कैसे जीना चाहते हैं, आप वो तार खींच के जीना चाहते हैं या बेहतर, तो वो चॉइस आपकी है।
2: आजकल तो काट ही देते हैं सर सारी तारे लोग, बट हम थिएटर की बात कर रहे हैं, अब थिएटर में कोई रीटेक नहीं होता है, तो कभी ऐसा होता है कि भूल गए डायलॉग, मतलब यू नो ब्रेन फ्रीज हो जाता है कि याद ही नहीं आता है, जबकि आप लगातार वो चीज करते हो, बट कभी कभार ऐसा होता है ना ब्रेन फॉग
4: जी,
2: तो ऐसा कोई हुआ है कभी स्टेज पर ऐसा आपके साथ?
3: ये तो शुभ्रोदा ही बताएंगे क्योंकि यही भोग रहे हैं सालों से मुझे मंच पे लेकर क्योंकि हमेशा एज पे रहते हैं कि अब इसने कुछ दिया गच्चा तो मेरे साथ ये अक्सर दिक्कत होती है कि मैं कभी कहीं कुछ लाइन खो देता हूँ, कहीं कुछ, तो सारा कुछ मेरी तरफ से होता है और इनकी जिम्मेदारी होती है उससे संभालने की। तो या मैं ही हूँ वो पापी
2: बट ऑडियंस के सामने, मतलब ऑफ कोर्स ऑडियंस को तो नहीं पता चलता होगा
4: जी।
2: तो कभी ऐसा कुछ हुआ है कि एकदम ही उल्टा डायलॉग हो गया या एकदम ही दूसरे का डायलॉग दूसरे ने बोल दिया?
4: मतलब कई बार होता है ऐसा, तो कई बार होता है क्योंकि आप लगातार शोज़ कर रहे हैं तो उसमें ये होता है कि आप जब शोज़ को लेके भी तो ये बात है ना कि व्हेन यू स्टार्ट गोइंग थ्रू द मोशंस एंड नॉट रियली अप्लाइंग योर माइंड टू इट, तो इन दोज मोमेंट्स देयर विल बी टाइम्स व्हेन शायद कॉम्प्लेसेंसी है या जो भी उसको कह लीजिए, कई बार ऐसा हो सकता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक हो सकता है. इन्होंने अभी दो शोज किए हम लोगों ने पुराने चावल के, जब इनको 102-103 बुखार था. ये मतलब इनको बहुत बुरा वायरल हुआ था और उसके बाद वो मुझे लगा गए और शोज के बाद मैं 7 दिन पढ़ा रहा बिस्तर पे, ये अलग बात है. लेकिन ये था कि वो आने से पहले फ़ोन करते थे, अरे भाई कोई लेटने की जगह ज़रा देख लीजिएगा. अब छोटा सा ऑडिटोरियम है, उसमें किसी भी तरह से कोने में पड़े हुए हैं जितने भी हो सके, कभी ऊपर से हुडी पहने हुए हैं, उसके ऊपर कंबल ओढ़े हुए हैं, ऐसे पड़े रहते थे और फिर उठ के शो करते थे. अब ऐसी हालत में कोई इंसान जब शो कर रहा है और वहाँ पे एनर्जी लगा रहा है, तो ऐसा हो ही सकता है कि वो एक आध लाइन इधर से उधर हो जाए. संभालने की जिम्मेदारी फिर किसी और की होती है, जो सामने को एक्टर होगा उसको संभालने की. तो इस तरह के कई कारण होते हैं, ये तो एक कारण है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आपके लाइनें इधर उधर कभी कभार हो जाए.
3: नहीं नहीं, इनका इनकी उदारता है. मैं स्वस्थ होकर के भी बहुत गड़बड़ियां कर जाता हूँ. ये मैं फिगर आउट नहीं कर पाता हूँ क्या हो क्या होता है. प्रॉब्ली जीनियस हूँ इसलिए शायद. नहीं तो वो चीजें गड़बड़ आती रहती हैं. मतलब ऐसा नहीं कि रोजमर्रा होता, लेकिन हाँ हमेशा जो सामने वाला एक्टर है वो एज पे रहता है. इससे इनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है क्योंकि वो हमेशा तैयार रहते हैं कि अब कुछ होने वाला है. और मैं इनके भरोसे रहता हूँ कि कुछ भी होगा ये तो संभाल ही लेंगे.
2: आई थिंक वही टीम वर्क ड्रीम वर्क होता है, राइट?
4: बिल्कुल बिल्कुल.
2: फिलहाल ये ड्रीम टीम आपको दिखेगी ऑन स्टेज लाइव टुमारो एंड डे आफ्टर 26th एंड 27th सितंबर को विद पुराने चावल. दो कमाल प्लेस डी फॉर ड्रामा एट द जंक्शन आपके लिए लेकर आए हैं. पटना के सुपर हीरो एंड पुराने चावल, एंड ऑफ कोर्स दीज आर टू वेरी वेरी एक्लेम्ड प्लेस. इफ यू नॉट बुक्ड योर टिकट्स येट, डू इट बिफोर दे आर सोल्ड आउट. दे आर अवेलेबल ऑन platinumlist.net. दिस इवेंट इज मेड लार्ज बाय अस. व्हेन आई कम बैक, सम मोर फन कॉन्वर्सेशन विद कुमुद सर एंड शुभ्रज्योति सर.

0: गद्दी छोड़ो अभी, बहुत हो गया, बहुत बैठ।
1: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM to 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
3: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
4: 34 डिग्रीज है, लो जाएगा अराउंड 31, काफी ह्यूमिड, 67% ह्यूमिडिटी है।
1: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द UAE, ओमान, कतर, KSA एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2।
5: मैं गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम। शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Friday evening, but the best weekend plan for you. We've got two of my favorite people in the studio. I think we all love them. We've seen them doing some great work in movies and OTT shows. And now, if you've not seen them perform live, is your chance. Purane Chawal. कल और परसों आप दुबई में देख सकते हैं विद पटना का सुपर हीरो डी फॉर ड्रामा एट द जंक्शन आपके लिए लेकर आए हैं पुराने चावल एंड पटना के सुपर हीरो पुराने चावल के दो स्टार्स इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ वी हैव गॉट मिस्टर कुमुद मिश्रा एंड मिस्टर शुभ्रज्योति तो सर इतने सारे फैंस इस वक्त ऐप पे आपको सुन रहे हैं यूएई में आपको सुन रहे हैं एनीथिंग यू लाइक टू से टू देम
2: हम दुबई पहली बार परफॉर्म करने आए हैं डी फॉर ड्रामा अपने दो नाटक लेकर पटना का सुपर हीरो जो कल 3:30 बजे है और तीन शोज हम पुराने चावल के कर रहे हैं तो हमारा पहला मौका है यहाँ परफॉर्म करने का तो हम बहुत एक्साइटेड हैं और आपसे मिलने को उत्सुक हैं और मुलाकात होती है
3: जी बिल्कुल बहुत

0: अब तक हम लोगों ने पुराने चावल जहाँ जहाँ भी किया और पटना का सुपर हीरो ये नाटक भी जहाँ जहाँ हमने किया, हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिले हैं। तो हम लोग बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि दुबई के दर्शकों को भी बहुत पसंद आएगा, आए वो देखें और फिर हमें बताएं उनको पसंद आ रहा है कि नहीं, तो प्लीज़ आएँ देखने।
1: बिल्कुल, एंड आप अपने टिकट्स यहाँ भी जीत सकते हैं, जस्ट अ बिट विल गिव यू अ चांस टू विन दोज टिकट्स इज वेल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप दोनों यहाँ आए, आपने टाइम निकाला। एंड एक जाते जाते मैं सवाल पूछना चाहूँगी कि आप दोनों में से कॉम्प्लीमेंट्स कौन अच्छे से नहीं लेता है? कुमुद सर ने तो आते से ही बोल दिया था कि नहीं नहीं नहीं,
2: हम मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल
1: है आपके लिए सर, क्योंकि मुझे मेरी ये थ्योरी है कि मेन डोंट लाइक कॉम्प्लीमेंट्स।
2: नो,
0: वी लव कॉम्प्लीमेंट्स, वी डोंट नो हाउ टू रिएक्ट।
1: हां वो ही, बिकॉज़ आई थिंक वुमेन डोंट गिव देम कॉम्प्लीमेंट्स ऑफन, दैट इज ट्रू। क्योंकि लड़की तैयार होके आएगी तो वो बोलेगी, मतलब एक्सपेक्ट करेगी कि बंदा तारीफ करे, बट बंदा अगर तैयार होके आता है तो।
0: कुमुद जी तो खूबसूरत आदमी है, इन माई केस इट्स ऑलवेज बीन ट्रू।
2: आँख में बंदे के इतनी मोटी परत होती है कि वो जब तक ये एहसास करता है कि कुछ बदला है सामने, तब तक देर हो चुकी होती है ज्यादातर। तब तक सामने वाला पूछ लेता है, भाई क्या हुआ, दिखा नहीं, और वो तब भी फिगर आउट कर रहा है कि क्या कुछ ऐसा है, बाल कुछ बदले हैं, कुछ किया गया है कपड़े, और वो तब भी ये फिगर आउट नहीं कर पा रहा है कि अरे यार क्या है जो मैं कह दूं कि बात संभल जाए। तो हाँ, उस मामले में हम लोग गधे हैं।
1: तो ऐसी सारी मस्ती देखने के लिए कल आपको जाना है एट द जंक्शन। डी फॉर ड्रामा लेकर आए हैं पुराने चावल, कल परसों दोनों दिन शोज हैं, सो गो एंड मीट देम एंड एंजॉय दिस वेरी वेरी अक्लेम्ड ड्रामा। पटना का सुपर हीरो भी है, तो जाइए देखिए, फैमिलीज के साथ जाइए। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू,
2: थैंक यू,
0: थैंक यू सो मच। बिग 106.2 फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae।

0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bowery and Kora. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: All right, we're taking you to Germany. I'm sure you know this by now. But agar aapne abhi tak register nahi kiya hai, do it. बस अगले 10 मिनट में आई एम गोना रन द रैंडमाइजर. तो हो सकता है शाम आप ही की शाम हो. यू नेवर नो, द यूनिवर्स वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज. सो इफ यू हैवंट रजिस्टर्ड येट, दिस इज एन ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप. वी टेकिंग यू टू जर्मनी. एंड टू पार्टिसिपेट, व्हाट्सएप करना है बिग चेक इन अपना नाम 0543091062 पर. यहां नंबर नहीं लगता है तो इंस्टाग्राम के थ्रू तो लग ही जाएगा. 106.2 बिग एफएम, दैट्स इंस्टा हैंडल. फिलहाल इफ यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड, मेक श्योर दैट यू आर इन द नेटवर्क एंड मेक श्योर अगर आपको कॉल आता है 800-1062 से तो उसे मिस मत करना, वरना क्या पता जर्मनी की ट्रिप मिस हो जाए.
0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bowery and Kora. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Life में जब कुछ अच्छा होता है ना तब मुझे pimple आ जाता है. I don't know if it's a good thing. अच्छा होता है in the sense कि कुछ exciting होने वाला होता है. When I want to look my best, I will get a pimple. अपनी peak जवानी में मुझे एक pimple नहीं आया. पता नहीं इतने pimples क्यों आ रहे हैं. आज I was so excited. कुमुद सर, शुभ्रो सर स्टूडियो आने वाले थे. मैंने ना फोटो वोटो खिंचाएंगे, रील वील बनाएंगे. सोशल मीडिया वालों ने दो तीन स्टोरी डाली है. फोकस ऐसा लग रहा है सिर्फ और सिर्फ मेरी पिंपल पे है. आई थिंक माई स्किन नीड्स अ लिटिल जर्मनी की सर्दी. तो मैं तो जाने वाली हूँ जर्मनी. अगर आप भी चेक इन करना चाहते हैं, डू इट राइट नाउ. बिग चेक इन योर नेम, सेंड अस अ व्हाट्सएप 0543091062 पर.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग टाइम राइट नाउ 7:06।
2: Bollywood.

0: I've got unbeatable holiday deals, staycations, visas, and your own expert travel agent waiting. Where are we going? Visit holidaymarket.ae.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bowery and Cora. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
2: Good evening, this is the Big Thrill, Mansi. And it's a thrilling and exciting baat ho nahi sakti. All expenses paid trip, wo bhi to Germany and... Just a WhatsApp message could take you there. अगर आपने अभी तक register नहीं किया है, do it right away. आपने सिर्फ एक message करना है. Big check-in, अपना नाम 2054309 1062. Right now गई है Shilpi. Hi Shilpi.
3: Hi Mansi, how are you?
2: I am good. DP किसकी है? आपकी है कि आपकी बेटी की है?
3: मेरी है.
2: यार Shilpi, कितने साल की हो? 14-15?
3: नहीं यार, मैं तो 32.
2: यार क्या खा रही हो, मुझे जरा डाइट बताओ. ऑनेस्टली फ्रॉम दैट डीपी यू डोंट लुक मोर देन 16.
3: एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट वो मैंने एआई से बनाया.
2: हाँ चलो शुक्र है, सच बोला मैंने. मुझे तो यहाँ पे एंग्जाइटी होने लगी थी कि भगवान ये कैसी ना इंसाफी है, Shilpi की स्किन ऐसी और मेरी स्किन में पिंपल्स. चलो आई एम ग्लैड कि सच बोला. क्या प्लान वीकेंड का?
3: कोई प्लान नहीं है, बस दुबई मॉल जाएंगे दोस्तों के साथ.
2: ये क्यों करने वाले हो?
3: बस ऐसे एक रेस्टोरेंट उन्होंने सिलेक्ट किया है तो.
2: अच्छा, मुझे लगा है वही लोगों को देखने. मेरा फेवरेट टाइम पास है, यू नो, जस्ट टू गेज एंड वॉच पीपल.
3: एग्जैक्टली, हम भी वही करेंगे एक्चुअली, बैठकर वहाँ पे.
2: बहुत बढ़िया. और मुझे पता है फिर सबके कपड़े जज करोगे, जूते जज करोगे. हाय रे इंसान, हमारा कुछ नहीं हो सकता है. फिलहाल Shilpi जर्मनी गयो पहले?
3: नहीं, ये पहली बार होगा.
2: अच्छा, कहीं और गए हो कि वो भी पहली बार होगा?
3: नहीं, हम यूके गए हैं.
2: अरे वाह,
3: लास्ट टाइम ऑफिस विजिट.
2: अरे बड़ा अच्छा ऑफिस है यार, यूके वूके ले जाता है. फिलहाल जर्मनी जाने का मौका आपको मिल सकता है आज शाम. यू हैव अ चांस शॉर्टलिस्ट होने का. वेरी सिंपल, आई विल बी टेस्टिंग योर जीके व्हिच इज योर जर्मन नॉलेज. मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, सही जवाब दिया तो आप हो जाओगे शॉर्टलिस्ट. ऑल द वेरी बेस्ट.
3: ओके.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bowery and Cora. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
2: All right, Shilpi, your question is, what is the German word used everywhere to wish someone a happy journey, a safe journey? Option A hai Guten Reise. Option B, Bon Appetit. Option C, is Ciao.
3: Guten Reise.
2: And sahi samay par sahi jawab dene ke saath saath, congratulations Shilpi ji, aap ho gayi hain shortlist for this trip to Germany. So fingers crossed, hopefully the next call that you get from us is to pack your bags and fly with Team Big, and we'll tell you don't shop a lot from Dubai Mall because luggage limited hai. But have a great weekend and all the very best.
3: Thank you so much Mansi. You
2: bye,
3: have a good
2: Shilpi.
3: Day. Bye bye.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bowery and Cora. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा सज्जा देरा रसल खोर अलकूस गुसेस अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
2: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2, brought to you by selfdrive.ae. The Big Jill.
3: All my favorite music in one spot.
2: Weekdays 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2, brought to you by insurancemarket.ae. Remember the person you thought was a superhero as a kid? For Manoj, it was Pintu Bhaiya, the fearless local hero of early 2000s Patna. A story of childhood, friendship, love and home. Experience Patna ka superhero, starring Ghanshyam Lal Sah, 26th September at the Junction. D for drama. Book your tickets now on Platinum List. Event made large by Big 106.2. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
4: Still a 42 to 50 minute delay अगर आप शिकायत में हैं, heavy traffic DIFC business bay वाले route पर, patchy traffic शेख मोहम्मद बिन जायद पर भी, not really bad, a 37 minute delay at the moment. It is bumper to bumper near festival city, Dubai Creek Harbour. जद्दाफ के पास भी आपको ट्रैफिक मिलेगा, हैवी ट्रैफिक इफ यू हेडिंग टूवर्ड्स उदमैथा, उमहुरैर की तरफ भी बहुत स्लो मूविंग ट्रैफिक है और बम्पर टू बम्पर सिचुएशन है करामा मनखुल साइड। देयर इज आल्सो ट्रैफिक दैट यू विल फाइंड नियर रफा नियर फहीदी, इट इज ऑल वेरी वेरी स्लो मूविंग। प्लस इफ यू ऑन द जुमेरा रोड गोइंग टूवर्ड्स जुमेरा 3, वहां भी पैची ट्रैफिक आपको मिलेगा। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू रिपोर्ट मुझे बता सकते हैं 800-1062 पर।
5: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
2: Big 106.2. Big.

0: शाम ये राजो
1: छाने नहीं रे बाबा आपते बाबा बाबा बाबूराव गणपतराव आपते बोल
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Mansi on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: कभी कभी ना मुझे घर जाने की बहुत जल्दी होती है. टुडे इज वन ऑफ दोज डेज, नॉट बिकॉज इट्स अ वीकेंड, बट जब से मैंने ट्रेलर देखा आई कांट वेट. मैं प्लान कर रही हूँ कि फ्राइडे डिनर के साथ मुझे ये बिंज वॉच करना है. आई एम टॉकिंग अबाउट शक ट्रस्ट नो वन, जो आज रिलीज हुआ है ऑन नेटफ्लिक्स. इफ मिस्ट्री थ्रिलर क्राइम ड्रामा इज अ जॉनर यू लव वॉचिंग, दिस इज इट. दिस ऑल्सो मार्क्स परिणीति चोपड़ा का ऑफिशियल वेब सीरीज डेब्यू. The show has Pariniti Chopra, Jennifer Winget, Tahir Raj Bhaseen, Soni Razdan, Anoop Soni, Sumit Vyas. Brilliant casting hai. Set against the backdrop of Shimla, story follows a mother played by Pariniti whose child vanishes years later after receiving mysterious animal pictures of the baby. She reignites her search for the truth only to descend into a dark web of deception when no one in her closest circle can be trusted, just like mafia. So yeah, मैं तो इतने धोखे खा चुकी हूँ कि शक ट्रस्ट नो वन इज द मोटो ऑफ माई लाइफ. फिलहाल मेरा प्लान है ये शो बिंज वॉच करना आज रात. व्हाटएवर योर प्लान्स आर, वी गोना कीप यू कंपनी हियर टुनाइट एंड ओवर द वीकेंड एज वेल. आज रात वी प्ले सम वेरी वेरी डिफरेंट म्यूजिक, सो इफ यू आर आउट एंड अबाउट यू विल एंजॉय द म्यूजिक. डू नॉट फॉरगेट टू टैग अस इफ यू आर डूइंग दैट. 106.2 बिग एफएम, दैट्स अस ऑन इंस्टाग्राम.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening. It is the Big Thrill. Friday की शाम है, the weekend is here. Weekend पे लोग grocery करने जाते हैं, grocery खरीदने जाते हैं. अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, exactly if you're planning to invest in real estate, I've got the best plan for you, and you'll thank me later जब आप वहाँ जाएंगे. सारी details देती हूँ when I come back. Also, we had so much fun this evening. We had Kumud Mishra and Shubhrajyoti sir in the studio. Of course, दोनों ने बहुत कमाल काम किया है, पर अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं लाइव तो ये कल भी आपके साथ, परसों भी इनफैक्ट आपके साथ होने वाले हैं विद अ फैंटास्टिक ड्रामा, फैंटास्टिक प्ले. आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स फॉर ऑल दोज हु स्टिल डोंट नो. फिलहाल किक स्टारिंग दिस आर विद

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: 106.2 The Beat of Bollywood.

0: मेरे बॉयफ्रेंड से वुलू वुलू करेगी तो धपकेंगी ना उसको।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: जिम नौटियाल, तनिष्क बागची एंड सुवर्णा तिवारी के पास फ्रॉम अ ब्रांड न्यू मूवी जो आज रिलीज हुई है V1।
1: द बिग थ्रिल विद मानसी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: If you like movies like स्त्री, मुंजिया, तो similar genre है, तो आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल जाने का टाइम मेरा, मैं बहुत excited हूँ, मैं देखने वाली हूँ परिणीति चोपड़ा on Netflix and I'm talking about शक, trust no one। मैंने कहा ना ये मेरी जिंदगी का मोटो हो चुका है, शक, trust no one। इतना भरोसा तोड़ने वाली दुनिया हो गई है ना कि शक करना बनता है, बाय डिफॉल्ट आ जाता है। फिलहाल यहाँ से मेरा जाना बनता है, आप मुझे हेलो कह सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम 106.2 बिग एफएम, दैट्स आवर इंस्टा हैंडल, आई एम मानसी टॉकिंग ऑन इंस्टाग्राम। यू हैव अ फैंटास्टिक वीकेंड, वी हैव गॉट एन अमेजिंग अमेजिंग मिलेनियल स्पेशल प्लेलिस्ट ऑन सैटरडे एंड संडे, इट्स कॉल्ड द बिग मिलेनियल वीकेंड्स, सो यू आर इन फॉर अ ट्रीट इफ यू आर अ फेलो मिलेनियल। एंजॉय द वीकेंड एंड स्टे राइट हियर, गुड नाइट।

0: dream holiday waiting, but no visa appointment? I'll help you secure one and get you holiday ready. Visit holidaymarket.ae or call 800-ALFRED.
1: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग जेल ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae फॉर द बेस्ट इंश्योरेंस डील्स इन द UAE कॉल 800-ALFRED 24/7 बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. लव लोफाई एंड नाइट फील्स, योर साउंडट्रैक्स टू अनवाइंड, ओनली ऑन द बिग चिल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: to The Beat of Bollywood. The Big Chill, brought to you by InsuranceMarket.ae.
1: InsuranceMarket.ae.
0: Listen to her every day.
2: Mugembo, khush hua.
3: Little Miss Sunshine, Sidra is here.
4: थैंक यू सो मच।
3: मेरा ना ड्रीम है कि मैं इतनी स्वीटली लोगों से बात करूं जितनी सिद्रा करती है।
4: नहीं, आप भी बहुत स्वीट हो।
3: मेरी टोन स्वीट नहीं है ना यार, मैं क्या करूं? आई थिंक पंजाबी खून है। मैं प्यार से भी बात करती हूं, लोगों को लगता है मैं चिल्ला रही हूं। फिलहाल सिद्रा विल प्ले दिस फन गेम विद यू, इट्स कॉल्ड द 5 सेकंड रूल। अब आप इतनी स्वीट है तो 3 इंडियन मिठाइयों के नाम। खत्म हो गया फटाफट। ठीक है, 3 थिंग्स यू नोटिस इन अ गाय द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन यू सी हिम।
4: शूज।
3: लड़की साउंड सीधी करती है बट है नी। 3 थिंग्स इफ यू कुड चेंज अबाउट योर मैनेजर। मैनेजर के हेयर स्टाइल से क्या लेना देना सिद्रा?
4: इट्स वेरी चंपू।
3: ये देखो, भरे रेडियो में आके इन्होंने अपने मैनेजर को चंपू बोला है।
0: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. The Big Chill. Where every song feels like a deep breath after a long day. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
1: 2 या 4? 4। कब तक वापस लौटेगा?
0: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
1: 4 या 5? 5।
2: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
3: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7 to 9

0: सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
2: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरी, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इनटू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे। क्योंकि अगर अवनी ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
0: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Avni. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Some nights need no words, just the right vibe. Sink into the big chill. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: beat of Bollywood. No rush, no noise, just soul-soothing music on a moonlit ride. This is The Big Chill on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: आप चुम्मी को घर ड्रॉप करते हो और मैं आपकी गाड़ी से उतरती हूँ और मैं अपने घर जा रही होती हूँ।